परेतश्चा आस्तुए हुम्ते मनो आस्तुए हुक्ते वचो आस्तुए हुव्रष्टे श्योत्ने आस्तुए दैनाम वंगोए मजदयस्नीम फ्रस्पायो खेद्र